0: यार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: लाइफ एंड नो जोक मैन नो यू नो व्हाट इट इज बिट्स बॉय ऑन दिस वन गिवन

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मैं पाचो
1: इटीविनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान विनो
1: मार मैं पाचो इटीविनो और रेडियो